ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। कुमामोतो प्रिफेक्चर की हुकूमत का कहना है कि 28 जुलाई को आने वाले शदीद जल्जले के नतीजे में 38 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है। प्रिफेक्चर के डिजास्टर रिस्पॉन्स हेडक्वार्टर्स ने मैग्नीट्यूड 7.1 के जल्जले से होने वाले नुकसान के आदाद शुमार जारी किए हैं। इनकी तस्दीक जुमेरात की सुबह 7:30 बजे तक हो चुकी थी। इतवार के बाद से हलाकतों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई है। हुकाम का कहना है कि इन आदाद शुमार में एक ऐसा शख्स भी शामिल है जिसके बारे में शुबा है कि वह आफत के बाद की वजूहत से जान की बाजी हार गया। आदाद शुमार से मालूम हुआ है कि 6,899 अफराद प्रीफेक्चर के 130 इनखलाई पनाहगाहों में मुकीम हैं। ईरान और ओमान अबनाए हुर्मस में जहाजरानी के रास्ते पर एक मुहाइदे के करीब हैं।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 6 अगस्त बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। हिरोशिमा में बृहस्पतिवार को अणु बमबारी की 81वीं बरसी पर वार्षिक शांति सभा आयोजित की गई। जापान भर में लोग पीड़ितों की याद में मौन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। 1945 की सुबह 8:15 बजे अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने पर हिरोशिमा सन्नाटे में डूब गया था। विस्फोट से उत्पन्न ताप और विकिरण ने शहर को तबाह कर दिया था और साल खत्म होने तक अनुमानित 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। जीवित बचे लोगों में से कई विकिरण के संपर्क में आने से कैंसर और अन्य संबंधित बीमारियों से ग्रस्त हो गए। प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए और रिकॉर्ड 121 देशों व क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार की सभा में भाग लिया। हिरोशिमा महापौर मात्सुई काजुमी ने शांति उद्यान के स्मारक पर अणु बम पीड़ितों के नामों की ताज़ा सूची रखी। पिछले 12 महीनों में जिन 4,393 लोगों की मृत्यु हुई या जिनकी मृत्यु की पुष्टि हुई उनके नाम जोड़ने के बाद अब इस सूची में कुल 353,639 नाम हैं। मात्सुई ने परमाणु अस्त्र उन्मूलन का आह्वान करते हुए एक शांति घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, विश्व के नीति निर्धारकों से नागरिक समाज परमाणु अस्त्रों के तत्काल उन्मूलन की मांग करता है। आप हमें कब तक निराश करते रहेंगे? आप निश्चित रूप से जानते हैं कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल मानवता के लिए विनाशकारी साबित होगा और परमाणु अप्रसार व निरस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति केवल बहुपक्षीय प्रयासों से संभव है। परमाणु हथियार संपन्न देशों के नेतागण, परमाणु निरस्त्रीकरण की प्राथमिक जिम्मेदारी आप ही की है। आपको निश्चित रूप से मिसाल पेश करने की जरूरत को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ताकाइची ने भी सभा को संबोधित करते हुए कहा, जापान 3 गैर परमाणु सिद्धांतों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है और युद्ध में अणु बमबारी झेलने वाला एकमात्र देश होने के नाते वो परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगा। यही हमारी मुहिम है। आज वैश्विक सुरक्षा का माहौल लगातार गंभीर होता जा रहा है। हाल ही में परमाणु अप्रसार संधि समीक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें हमने देखा कि परमाणु अस्त्र मुक्त विश्व की राह आसान नहीं है, लेकिन यही कारण है कि हमें आगे बढ़ते रहना होगा। जापान सरकार ने अप्रैल 2027 से 2 साल के लिए खाद्य पदार्थों पर उपभोग कर को घटाकर 1% करने का निर्णय लिया है। इस समय यह कर 8% है। बुधवार को कैबिनेट की असाधारण बैठक में इस कटौती को मंजूरी दी गई। उपभोग कर को घटाकर 1% करने के अलावा निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को अलग अलग भत्ते भी दिए जाएंगे ताकि उपभोग कर को एक तरह से शून्य बनाया जा सके। नीति में कहा गया है कि सरकार आवश्यक धनराशि जुटाने के लिए सभी खर्च और राजस्व स्रोतों की समीक्षा करेगी। वो घाटे की भरपाई के लिए बंधपत्रों पर निर्भर नहीं रहेगी। सरकार वित्त वर्ष 2027 का बजट तैयार करने के दौरान किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है। प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, हम सभी विशेष खातों, सरकारी निधियों और इसी तरह की चीज़ों की नए सिरे से समीक्षा करेंगे। मुझे विश्वास है कि इन सुधारों के माध्यम से हम आवश्यक धनराशि जुटा सकते हैं। जापान कारोबारी महासंघ केईदान रेन के प्रमुख त्सुई योशिनोबु ने पत्रकारों को बताया कि कर कटौती से सामाजिक सुरक्षा निधि पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को आम जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए और जनचिंताएं दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को वैकल्पिक राजस्व स्रोत स्पष्ट करने चाहिए और अपने वायदे के अनुसार कर कटौती का ये उपाय 2 साल बाद वापस ले लेना चाहिए।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। कुमामोतो प्रीफेक्चर की सरकार का कहना है कि उसने 28 जुलाई को आए शक्तिशाली भूकंप में 38 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। प्रीफेक्चर के आपदा प्रतिक्रिया मुख्यालय ने आंकड़े जारी किए हैं जिनमें बताया गया है कि 7.1 की तीव्रता के भूकंप से बृहस्पतिवार सुबह 7:30 बजे तक कितने नुकसान की पुष्टि की जा चुकी थी। मृतकों की संख्या में रविवार से कोई बदलाव नहीं है। अधिकारियों के अनुसार इनमें से एक की मौत आपदा पश्चात के कारणों से होने का संदेह है। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रीफेक्चर के 130 आश्रय स्थलों में 6,899 लोग रह रहे हैं। ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन मार्ग पर समझौते के करीब पहुंचने वाले हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने बुधवार को कहा कि संयुक्त वक्तव्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने मार्ग के भौगोलिक निर्देशांकों पर सहमति बना ली है, बशर्ते कि कोई तीसरा पक्ष इस प्रक्रिया में बाधा न डाले। बागई ने कहा कि ईरान ने तकनीकी सुरक्षा और अन्य मुद्दों की समीक्षा की है। उन्होंने होर्मुज के बंद होने के लिए अमरीका और इसराइल को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये उनकी सैन्य आक्रामकता का परिणाम है। प्रवक्ता ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच ये समझौता जलडमरू मध्य में नौवहन सुरक्षा अकेले सुनिश्चित नहीं कर सकता क्योंकि अमरीका अब भी खतरा बना

0: हुआ है। अमेरिका चीन पर लगने वाले व्यापार प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा रहा है। इसके जवाब में चीन के अधिकारियों का कहना है कि वो भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। पेचिंग ने घोषणा की है कि वो अमेरिका भेजे जाने वाले ड्रोन विमानों पर निर्यात नियंत्रण को और कड़ा कर रहा है। अधिकारियों ने बुधवार को इन नियमों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ड्रोन विमानों, प्रमुख घटकों और संबंधित प्रौद्योगिकी सहित ऐसी निर्यात वस्तुओं जिनका नागरिक और सैन्य दोहरा उपयोग किया जा सकता है, उनकी कड़ी समीक्षा की जाएगी। पेचिंग ने 6 अमरीकी संगठनों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। चीन का आरोप है कि ये संगठन उसके शिनचियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र पर अवैध अमरीकी प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं। इन संगठनों को चीनी संगठनों और व्यक्तियों के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित किया गया है। चीनी वाणिज्य मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इस बात पर जोर दिया कि ये उपाय कुल मिलाकर संयमित हैं और उन्होंने अमेरिका से अपने प्रतिबंध वापस लेने का आग्रह किया। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।